0: परम पूज्य गुरुदेव जगत पिता स्वामी के इस वैकुंठ धाम में उनके समक्ष उपस्थित होने का परम सौभाग्य प्राप्त करते हुए आज आपसे हम सभी प्रेम पर्व होली महोत्सव का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व जानना चाहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि इस पर्व में समाज के हर वर्ग तमाम भेदभाव भूलकर आपस में प्रेम डोर से बन जाते हैं, एक अति सुखदायक भाव में रंग अबीर गुलाल का आनंद उठाते हुए सर्वत्र वसुधैव कुटुंबकम का नजारा दिख पड़ता है, पूरे बिहार में तो बहार आ जाती है।
1: परम प्रिय छात्र छात्राओं, सचमुच तुम सभी महान भाग्यशाली हो। युगावतार स्वामी की अखिल विश्व के साथ साथ बिहार राज पर भी बड़ी कृपा है। प्राचीन शास्त्रों में कल्प भेद से होली महोत्सव की विभिन्न चर्चाएं अंकित हैं। शास्त्रकारों के अनेक मत भी हैं। मैं यह संक्षिप्त में तुम्हें मूल विषय की जानकारी दे रही हूँ। सतयुग में एक बार सनकादि ऋषि भगवान के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक पहुँचे। प्रभु कक्ष के आगे तैनात द्वारपाल जय और विजय से ऋषि ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। चूंकि सनकादि ऋषिगण प्रभु से प्राप्त वरदान स्वरूप हमेशा किशोरावस्था में ही दिख पड़ते हैं, अतः दोनों द्वारपाल सबों को एक जैसा छोटे उम्र में देख दर्शन से वंचित करते हुए लौट जाने को कहा। ऋषिगण यह आग्रह करते रहे कि हमारे आने का संवाद प्रभु के चरणों तक पहुंचा दीजिए, वे जो भी आदेश देंगे शिरोधार्य है। ऋषिगण की अवहेलना कर दोनों द्वार पर अपने हट पे डटे रहे। अंततः क्रोध में आग बबूला होकर ऋषिवर दोनों द्वारपालों को श्रापित कर दिए। जगत पिता को तो आगे कुछ और ही लीला करनी थी। ऋषि ने कहा, रे हठी अहंकारी द्वारपाल, तुम दोनों अगले 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ तथा हरि विमुख होकर पतित जीवन व्यतीत करो। निज भूल का बोध होने पर दोनों द्वारपालों ने नतमस्तक हो क्षमा मांगते हुए उद्धार की याचना की। दयालु ऋषि ने पुनः कहा, ठीक है, 3 जन्मों तक आसुरी योनि भोग लेने के बाद पुनः दोनों भगवान के दरबार में नियुक्त हो जाओगे तथा पूर्व की भांति हरि कृपा मिलेगी। तीनों जन्मों में प्रभु ही अवतार लेकर तेरा उद्धार करेंगे। वृथा न होई देव ऋषिवानी। श्रापवश दोनों सतयुग में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष हुए। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण तथा द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। तीनों युगों में दोनों ने अपनी आसुरी चरित्र से जगत जीव को आहत करते हुए अति कष्ट पहुंचाया। ऋषिवाणी स्वीकार कर भगवान ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष को गति दी। बच्चों, अब तक की पौराणिक चर्चाओं पर चिंतन मनन करते हुए पुनः एक मधुर भजन गाकर परम पूज्य स्वामी को प्रसन्न करो।

0: जनता, इस दिव्य माहौल में तो सचमुच ऐसा लग रहा है कि स्वामी तुम सबों पर आशीष की वर्षा कर रहे हैं। अब ध्यान से आगे सुनो। वराह भगवान के द्वारा जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया गया तो हिरण्यकश्यप को भ्राता के निधन से अति क्रोध तथा आत्मग्लानि हुई। प्रतिशोध की भावना से उसने एकांत वन में जाकर घनघोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और मनोइच्छित वरदान मांगा कि प्रभु मुझे संसार का कोई प्राणी मार ना सके, मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न भीतर हो न बाहर, न पृथ्वी पर हो न आकाश में, कोई भी अस्त्र शस्त्र का असर मुझ पे ना हो, युद्ध में कोई मुझे पराजित ना कर सके, मैं समस्त जगत का एक छत्र सम्राट हूँ। ईश्वरीय प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया। सचमुच ब्रह्मा जी के वरदान से वह सबों पर विजय प्राप्त कर भूमंडल का सम्राट बन बैठा और मनमाना जघन्य अत्याचार करते हुए सबों को महाकष्ट पहुंचाने लगा। जगत जीव तथा समस्त देवगण त्राही त्राही करते हुए भगवान को पुकारने लगे। प्रभु तो सब देख ही रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, अब होली महोत्सव संदर्भ का दृश्य सामने आ रहा है, ध्यान से सुनना। जब हिरण्यकश्यप घनघोर जंगल में तपस्या के लिए चला गया था तो मौका ढूंढकर देवराज इंद्र अपनी सेनाओं के साथ अकस्मात आक्रमण कर समस्त असुरों को छिन्न भिन्न कर दिया। असुर के राजभवन में प्रवेश कर वलात हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया तथा देवलोक ले जाने लगे। हर इच्छा से रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद जी से हो गई।
1: नारायण नारायण, हे देवराज, इतने व्यस्त स्थिति में आप कहाँ से आ रहे हैं? आपके साथ ये महिला कौन है? आपके अंग रक्षकों को भी परेशान देख रहा हूँ।
2: देवर्षि, आपको कोटि कोटि नमन। मैं एक बहुत बड़ी सफलता का संवाद सुना रहा हूँ। यह महिला कयाधु महापापी हिरण्यकश्यपु की पत्नी है। राक्षसों को पराजित कर इसे देवलोक ले जा रहा हूँ। वहाँ इसे विविध प्रताड़ना दी जाएगी जिससे अत्याचारी राक्षसों को भी सीख मिल सके।
1: हे देवराज, ऐसी भूल आप कदापि न करें, अन्यथा गलत परिणाम होंगे। कयाधु अभी गर्भवती है, उसके उदर में पल रहा बालक भगवान का अनन्य भक्त है। वह जन्म लेकर बचपन से ही भक्ति मार्ग अपनाते हुए प्रभु के ऐश्वर्य को समस्त भूमंडल में फैलाएगा। उसके निमित्त ही प्रभु अवतरित होंगे तथा आसुरी शक्ति का अंत करेंगे। अतः इसे मेरे आश्रम में ही छोड़ दीजिए, मैं हरी इच्छा से सब देख लूंगा।
2: हे देवर्षि, मैं सब समझ गया। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। कयाधु को अब आपके स्त्री चरणों में छोड़ता हूँ।
1: नारायण नारायण।
3: जन्म से ही प्रहलाद भक्ति गंगा में स्नान करते हुए अपने 5 वर्ष की आयु में ही भगवान का अनन्य भक्त हो गया। वह अपने बाल मित्रों के साथ घूम घूम कर प्रजाजनों को हरि भजन का अभ्यास कराने लगा।

0: खबरदार नालायक, बंद करो ये सब नाटक। आवारा बालको, तुम्हें मेरा कुछ भी भय नहीं। मेरे लाख समझाने के बाद भी आदेश की अवहेलना कर रहे हो। मैंने जब कह दिया कि मैं विष्णु से अधिक सामर्थ्यवान हूँ, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरा भजन करो, उसे छोड़ो, लेकिन तुम लोगों के अंदर इसका कुछ भी असर नहीं दिख रहा है। उल्टे धृष्टता किए जा रहे हो तो कठिन दंड के लिए तैयार हो जाओ। आदेश की अवहेलना करने वाले को मैं एक से एक पीड़ा देकर तड़पाते हुए यमलोक भेजता हूँ।
1: परम पूज्य पिताजी, आपको कोटि कोटि नमन। मुझे क्षमा करे, मैं तो बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहा हूँ। मैं जिनका भजन कर रहा हूँ, उन्हीं से तो आप समस्त दुर्लभ वरदान प्राप्त किए, किंतु अहंकार वश अज्ञानता का शिकार हो खुद को ही सर्वस्व मान बैठे हो। मार्ग भी बिल्कुल गलत अपना चुके, आगे इसका परिणाम क्या होगा, इस पर आप कभी विचार ही ना किए। पिताजी, यह ना आपके हित में है, ना प्रजाजनों के ही।
2: जगत के निर्माता,
1: पालन करता तथा संहारक एक परमेश्वर ही है।
2: अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते।
1: अतः प्रभु, भक्ति मार्ग पर चलने में ही सबों की भलाई है। मैं आपका संतान हूँ, अतः मेरी बात पर अमल करे पिताश्री।
0: मूढ़ बालक, दो दिनों का छोकरा मुझे ही शिक्षा देने लगा। तुम सचमुच कठोर दंड के ही भागीदार हो। हाँ मंत्री जी, आप इसकी नालायकी देख रहे हैं ना? अब मेरा आदेश है कि शीघ्र ही जल्लाद को बुलाकर इस अधम को कठोर से कठोरतम दंड देते हुए यमलोक भेज दिया जाए। मैं तभी चैन की सांस लूंगा।
1: हे पिताश्री, आपको जो भी दंड देना हो उसके लिए मैं सहर्ष तैयार हूँ। मुझे अपने प्रभु पर पूर्ण भरोसा है। देव ऋषि नारद जी के सत्संग में मैंने सुना था।

0: भगवान के भक्तों के लिए तो यह चरितार्थ होता देखा गया है।
1: गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई।

0: हिरण्यकश्यपु के आदेशानुसार जल्लादों के द्वारा प्रहलाद पकड़कर ऊंचे पर्वत से फेंक दिया गया, हाथी से कुचलवाया गया। विषधर सर्प से डसवाया गया, सारे शरीर में सूली चुभाई गई, समुद्र में डुबो दिया गया तथा उसके अलावे भी अन्य कई एक असह्य दंड दिए गए, परंतु कहीं भी भगवान की प्रत्यक्ष कृपा से उसका बाल बाका न हुआ। स्वामी सर्वत प्रत्यक्षता ही उसकी रक्षा करते रहे, हरि भक्ति में कोई भी बाधा उसे आहत न कर सकी। समस्त देवगण तथा जगत के प्राणी इन सभी प्रत्यक्ष घटनाओं को देख भक्त और भगवान का गुणगान करने लगे।
1: महामंत्री वर, ये महान आश्चर्य का विषय है कि नीच प्रहलाद को एक से एक प्राण घातक दंड दिए गए, लेकिन इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, उल्टे मुझे देख प्रसन्न होकर हरि भजन कर ही रहा है। मैं तो आत्म गलानी से मरा जा रहा हूँ, दंड की अब कौन सी युक्ति अपनाऊं, आप अपनी राय दीजिए।
2: राजन, आप चिंता ना करें, एक अचूक उपाय और शेष है। हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तिथि को आपके द्वारा संचालित मदनोत्सव में आपकी छोटी बहन सिंगिका अग्नि के ढेर में बैठ समस्त प्रजाजन को बिना जले ही निकलकर चमत्कार दिखाती है। चूंकि सिंगिका जी को तो अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त है, तो इस बार ऐसा किया जाए कि प्रहलाद को फुसलाकर साथ ही में दीदी बैठा ले। वरदान में प्राप्त अंग ओढ़े रहने से सिंगिका जी बच जाएगी, अग्नि से बाहर निकल आएगी और प्रहलाद वहीं पर जलकर राख हो जाएगा। हे राजन, यह तिथि कल ही तो है।
0: नियत तिथि एवं समय पर भक्त प्रहलाद को साथ लेकर तथा सिर्फ स्वतः अंगवस्त्र ओढ़कर अग्नि ढेर के ऊपर सिंगिका सहर्ष बैठ जाती है। इतने में भगवान के आदेश से पवन देव के द्वारा सिंगिका के शरीर पर से चादर उड़कर भक्त प्रहलाद को ढक लेता है तथा सिंगिका जलकर राख हो जाती है। प्रहलाद प्रसन्न मुद्रा में प्रभु नाम स्मरण में लीन है। जब समस्त अग्नि बुझ जाती है तो प्रत्यक्ष स्थिति देख हिरण्यकशिपु बहन के वियोग में छाती पीट लेता है एवं भयंकर गर्जना करते हुए हाथ में नंगी तलवार लेकर सामने कूद पड़ता है।
1: रे विष्णु, तुम्हारा सारा खेल देखते देखते आंखें पथरा गई। अब मेरे सामने आ और मुझसे युद्ध कर, अपनी शक्ति दिखा। आज ही अंतिम फैसला हो जाएगा कि तू बड़ा है या मैं। तेरे भक्त की तो बोटी बोटी नोच कर अभी खा।

के ढोंगी, अब बुला अपने भगवान को, मैं देखता हूँ वो छलिया आता है या मेरे भाई से कहीं छिप जाता है। मैं अभी तुम्हारा सर घर से अलग करूँगा।

इतने में खंबा फटकर दो टुकड़ा हो जाता है। उस मध्य एक भयंकर रूप धारण कर भगवान प्रकट होते हैं, जिनका सर सिंह का तथा धर नर का। वे नरसिंह देव गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यपु का गर्दन मरोड़कर अपनी गोद में बिठाकर नख से उसकी छाती फाड़ डालते हैं। वह उनकी गोद से लुढ़क कर वहीं नीचे धराशाही हो जाता है। उसकी आत्मा प्रभु में विलीन

0: हे मेरे प्यारे पुत्र, मुझे क्षमा करना, मेरे आने में देर हो गई। मुझे बहुत पहले ही इस पापी का अंत कर देना चाहिए था। तुझे बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े।
1: हे जगत पिता, हे पालनहार, हे मेरे सर्वस्व, आपको कोटि कोटि वंदना। आपके आने में कुछ भी देर कहाँ हुई प्रभु, आप तो मेरे हृदय में सतत विराजित होकर हमेशा हर दुस्सह विपदा से मेरी रक्षा करते ही रहे। मेरे चलते आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितना अपमान का घुट पीना पड़ा, परंतु मेरी रक्षा में इन सबों की परवाह न करते हुए आप हमेशा तत्पर ही रहे। अतः हे करुणादान, मैं किस विधि आपकी स्तुति करूं?
0: बेटे, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसे निश्चल भक्त का निवास तो हमेशा मेरे हृदय में रहता है। अभी तुझे जो भी मांगना है, मैं वह सब कुछ देने को तैयार हूँ। तुम्हें इच्छित वर प्रदान कर मुझे अति प्रसन्नता होगी।
1: प्रभु, अपने चरण को अविरल भक्ति एवं सतत पावन छत्र छाया प्रदान कर तो आपने सब कुछ दे दिया। बस यही जन्म जन्मांतर अक्षुण रहे। मेरे सर्वस्व, अब बस एक ही याचना है, मेरे जन्मदाता पिता को उनके समस्त अपराध को क्षमा करते हुए हमेशा के लिए अपने लोक में स्थान दे दे। तभी मैं पितृ ऋण से उऋण हो सकूंगा
2: और मेरी स्नेहमयी माँ को अपने पावन चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करे।
0: हे महाभाग, तुम्हारा हृदय अति पवित्र और धन्य है। तुम्हारे पिता का उद्धार तो उसी वक्त हो गया जब उसे तुझ जैसे दिव्यात्मा संतान की प्राप्ति हुई। वह तो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए मेरे हाथों का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हो गया। ये सारे कृत्य तो सनकादि ऋषि श्राप के अनुरूप संपन्न किए जा रहे हैं। तुम्हारी माँ तो अति पूजनीय मेरी अनन्य भक्ता है। तुझ जैसे संतान पाकर तो उनकी कोख धन्य हो गई। अतः हे मेरे लाल, उन दोनों की ओर से हमेशा बेफिक्र रहो। हे दिव्यात्म स्वरूप लाड़ा, आज से तुम विश्व में भक्त शिरोमणि कहलाओगे। तेरी विमल भक्ति का गुणगान चारों युगों में होगा। इस ऐतिहासिक घटना में तुम्हारी बुआ सिंहिका भी अपने आप को आहूत कर दी। अतः आज से वह सिंहिका नहीं होलिका के नाम से विश्व विख्यात होगी तथा यह फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा की तिथि एवं चैत कृष्ण प्रतिपदा होलिका के नाम पर ही होली पर्व के रूप में विश्व प्रसिद्ध होगा। आज के दिन ही हर वर्ष लोग होलिका दहन तथा उस अग्नि भस्म का वंदन करेंगे एवं तमाम भेदभाव भूलकर सभी लोग मेरा भजन गायन करते हुए रंग अबीर गुलाल से आपस में प्रेम सद्भाव की वर्षा करेंगे, जिससे मेरी कृपा बनी रहेगी। यह दिवस प्रेम पर्व होली के रूप में विख्यात होगा।

प्रिय शिष्यगण, अब होली पर्व का आध्यात्मिक महत्व समझो। जगत में सांसारिक मोह माया से ढका जीव ही सिन्हिका है। जब तक वह भगवत भक्ति का अंग वस्त्रम ओढ़े रहती है, तब तक खड़ विकार रूपी अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। और ज्यो ही जीव से भक्ति का चादर हट जाता है, तो उसे खड़ विकार रूपी अग्नि ही जलाकर भस्म कर देती है। जब उसके सारे खड़ विकार जलकर भस्म हो जाते हैं, तो जीव सिंहिका से होलिका रूप में परिणत हो जाती है। होलिका अर्थात पवित्र हृदय, और जो मानव शरीर में आकर तुम्हारे जैसे भगवत भक्ति मार्ग पर चलते हुए सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा को अपना जीवन आधार बना लेता है, उसके जीवन में सद्गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान की अग्नि से सारे खड़ विकार जलकर भस्म हो जाते हैं, और वह प्रेमा भक्ति रूपी अंग वस्त्रम को धारण किए एक आदर्श जीवन यापन कर प्रभु से एकाकार हो जाता है। चहुं ओर उसकी कीर्ति गाई जाती है। वह जीव शिव स्वरूप हो जाता है। उसे कणकण में ईश्वर की सत्ता ही दिखाई पड़ती है, तथा सतत भगवान की छत्र छाया तले वह मानव से माधव बनकर प्रभुमय हो जाता है। अतः अपने परिजनों के साथ हमेशा प्रेमा भक्ति मार्ग पर चलते हुए परमानंद में लीन रहो। बच्चों, अब हम सभी स्वामी के चरणों में होली महोत्सव का आनंद प्राप्त करें। जय साईं राम।

बेसुमार बेअंत बढ़दाता मने गही रहो पेख प्रभु को। जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को। गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबू चूरो बुझ प्रभु को। जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिरसै परम अंधेरा। थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ। जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो सरन परयो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड़ भाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा। दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ। काल जाल अरमहा जंजाला छुटके जमै डरा।

साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जय श्री महला पंजवा जा कहो पए गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याद ना काई रहाओ। दिसै सब

कृपा ठाकुर दया मया कृपा ठाकुर की सही संत सुभाई तिन कै संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवां गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहा दिसै सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन्माई एकै रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई।

अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ लिहो नानक अपने को संसार पावो के कूप। जैत सरी महला पंजवा कोई जान।

खोज तहारे पायो नाहे तह पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेखते न्यारा। पावन नाम जगत मैं हर को कबू नाए संभारा, नानक शरण परयो जग बंधन राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा, संत कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात, चितवो अंधन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे, एक पूरी दर्शन दीजै, नैन हमारे प्रे रंग रंगारे, एक तिलपी नाती रीजै। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना, चात्रक जवैत संतिया, जन नानक गुर पूरा पाया, सगली तिखा बुजंतिया। यार वे प्रे हब्बे सखिया, मुंह कही ना जेहिया, यार वे हिक डूं हिक चाड़े, हों किस चितेहिया। हिक डूं हिक चाड़े अनक प्यारे, नित कर दे भोग बिलासा, तना देख मन चाओ उठंदा, हों कद पाई गुणतासा। जिन्नी मैंडा लाल रिजाया, हों तिस आग्या मन डेहिया। नानक कह सुन बिनो सुहागण, मुंह दस डिखा फिर केहिया। यार वे प्रे अपन पाणा, किस नी सी शंदा, यार वे तै रव्या लालन, मुंह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया, जै तन भाग मथाने, बहा पकड़ ठाकर हौ किदी, गुण अवगुण ना पिछाणे। गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया, तिस हब्बो किछ सुहंदा। जन नानक तन सुहागण साई, जे संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी, सा मैं पाई, वर लोड़ींदा आया वजी वादाई। महामंगल रहस्थिया, फिर दयाल सद नवरंगिया, वड भाग पाया गुर मिलाया, साध कै सतसंगिया। आसा मनसा सगल पूरी, प्रे अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सुख सुखेंदी, सा मैं गुर मिल पाई। जय श्री महला पंजवा, कर दूजा शंत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सलोक। ऊंचा अगमा पार प्रभ, कहन न जाया कथ, नानक प्रभ शरणागति, राखन को समरथ। शंत ज्यो जानो त्यों राख, हर प्रभ तेरिया, केते गणो असंख्य अवगण मेरिया। असंख्य अवगण खते फेरे, नित प्रत सद भूली है, मोह मगन बिकराल माया, तौ प्रसादी कूली है। लूक करत बेकार बिखड़े, प्रभ नेर हूं ते नेरिया, बिनवंत नानक दया धारो, काढ़ भव जल फेरिया। सलोक निरत ना पवे असंख गुण, ऊंचा प्रभ का नाओ, नानक की बेनंतिया, मिलैन थावे थाओ। शंत दूसर नाही ठाओ, का पह जाइय, आठ पैर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है। त्याए सो प्रभ सदा अपना, मनह चिंदया पाई है, तजमान मोह विकार दूजा, एक स्यों लिवलाई है। अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है। सलोक अरे मन ता को त्याई है, सब जाके हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निभ है साथ। शंत साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाहे कोए, थानथन अंतर आप, जलथल पूर सोए। जलथल महियल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बेअंत गुण ताके क्या गनी। पज सरन स्वामी सुख है गामी, तिस बिना अन नाहे कोए, बिनवंत नानक दया धारो, तिस प्राप्त नाम होए। सलोक चित जे चितविया, सो मैं पाया, नानक नाम ते आए सुख सवाया। शंत अब मन छूट गया, साधु संग मिले, गुरमुख नाम लया, ज्योति ज्योत रले।
ਹਰਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਬੁੱਝੀ ਤਪ ਤਿਆ ਗਾਨਿਆ ਗੈ ਪੁਜਾਲੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਨਿਆ ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁਖ ਜਲੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਜੈਤ ਸਰੀ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਧਾਣੂ ਸੰਸਾਰ ਗਰਭ ਅਟਿਆ ਕਰਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਟਿਆ ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਅਭਿਮਾਨ ਬੂਡੇ ਮਰਨ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਤਾ ਇਹ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵੇ ਪੁਜ ਦਿਵਸ ਆਏ ਲਿਖੇ ਮਾਏ ਦੁਖ ਧਰਮ ਤੂਤੈ ਡਿਠਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਤਨ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਉਦਮ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਵਹੀ ਭਰਮੈ ਜੋਨਿਆ ਸੰਖ ਮਰਜਨ ਮੈਂ ਆਵਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸੈਲ ਤਰਵਰ ਗਣਤ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ ਬੀਜ ਬੋਵਸ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਵੇ ਰਤਨ ਜਨਮ ਹਰ ਅੰਤ ਜੂਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਹੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮੈ ਪਰਮਾਏ ਖਿਨ ਏਕ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵਹੀ ਜੋਬਨ ਗਿਆ ਬਤੀ

श्री राम रंगिया पार पूर्ण नै निमख मन मैं उठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया चरण कमल सरण आए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मेर साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवा वार श्लोका नाल एको अंकार सतगुर प्रसाद सलोक आद पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अगनासन जगदीश्वर पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़ साच पूर रहे हो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई सलोक और चंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सा सा स्मरंत नानक महायग्न ना बिनासन मुख तले पैर उपरे वसंदो कहुथड़ै थाए नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरे जिस दै नाए पौड़ी रगत बिंद करन मिया अगन उदर मजहार उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुवार हर सिमरत तू ना जलै मन तन उर तार बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण खंडन काल कलेसै प्रभ सिमर नानक ने दूरन हब रंग माणै जिस संग तै स्यों लाइय नेहो सो सहो बिंदना विसरो नानक जिन सुंदर रचिया देहो पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग गृह मंदर रथ अस दिए रचपले संजोग सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरतो तन महरिया लै जाए विजोग साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग सलोक कुटम जतन करण माया अनेक उद्यम हर भगत भावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै टुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत साई से तीरत आ पौड़ी जिस बिसरत तन भस्म होए कहते सब प्रेत खिन ग्रे मैं बिसना देवही जिन स्यो सोई हेत कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत जैसा बीजै सो लुणै कर्म हो खेत अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक कोड़दान इस नानंग अनक सोधन पवित्र उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ती मुपाहे मन वसंदड़ो सच सहो नानक हबो डुखड़े उलाहे पौड़ी कोट अगा सब नास होहे सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ
ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੈ ਕੱਟੀ ਐ।

नाद पुरंकै बेदया सनमुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक नाथी वै बाहरा नानक आसड़ी निवाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ लै जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखै बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी उदूत करणं हर रमणं संयोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त कीमना सक्का पाए सुख मिती हूं बाहरे नानक सा वेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिलै गुसाई आठ पैर हर त्याय कह मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरण सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारिया रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारिया भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उधरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना स्यो संग पाइय वड्डे पुन आठ पहर हर त्याय हर जस नित सुन सलोक दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पय दयाल ना

सारा संसार कुल खलकत कुल दुनिया मैं मेरे बिच लगी हुई है। ऐ मेरा है, ऐ मेरा है, ऐ मेरा है।

लेकिन साहिब कहंदे ने ऐ मनुख ऐ बंदिया कदी ये भी आखिया कि सब कुछ तेरा है, मेरा ते है ही कुछ नहीं। जियो पिंड सब दिसदा ते तेरा दिता होया शरीर है, तेरे दिते हुए श्वास ने जब तक तू चला रहे हैं वो चल रहे हैं। ते जदो तू चाहे चलते हुए श्वासां नू संगल पाके रोक सकने है। ते फिर साडा ते नाना हो गया सारा कुछ। जियो पिंड सब तिसदा सब किच है तेरा।

लागे। एक फिलासफर की गल चेते आई, ध्यान देना जरा। रसना पवित्र को सारे प्यार नाल आखो सतनाम, सारे आखो जी सतनाम। एक फकीर सारा दिन उन्हें अपने खुदा नु याद करते रहना, माला फेरते रहना। किते कुछ मिल गया खा लेना, किते ना मिलिया अल्लाह ही अल्लाह खैर सल्ला। एक दिन माला फिरदा फिरदा इहदे मन विच गल आ गई, कहिंदे मेरे खुदा, कहिंदे मैं तेरा इतना नाम जपदा, तेरी मैं इतनी बंदगी करदा हां, तू मैनू दिता ते कुछ नहीं, ख्याल करना जरा। कहिंदे तू मैनू दिता ते कुछ नहीं, चला गया जाके अरजोई कीती अपने खुदा दे अगे, नवाज पढ़ी, झोली अट के कहंदा है मेरे खुदा अज मैं तेरे कोलों कुछ मंगना आया, कुछ लेना आया तेरे को। आवाज आई कहंदे फकीर साईं की चाहुंना है, कहंदे मेरे मालका तू चंगी तरह जानदा है मैं तेरे कोल किस वास्ते आया, आ वेख तेरी बंदगी करन वालियां दा हाल, मेरा कुर्ता भी फटिया होया, दस्तार भी फटी है, पैरां विच जोड़ा भी नहीं, किते ते किसे दरवाजे तो तां मैनू खैर मिल जांदी है, ते किसे दरवाजे तो कहंदे ने जा भाई जा अगले दरवाजे ते जा, इत्थे कुछ नहीं। अक्सर ऐसा हुंदा है हर दरवाजे तो खैर भी नहीं मिलती, खैर लैण वास्ते दरवाजा ते इक्को ही चाहिदा है। बोलो श्री अगर कोई इसनू समझ सकेगा, हर दरवाजों खैर नहीं मिलती, एक घरों ही खैर मिलनी है, एक ही दहलीज के अंदर पैर भरना पवेगा, एक दरवाजे के अंदर आना पवेगा, फिर उतों खैर मिलेगी ते फिर साड़ी झोली भरेगी। बोलो श्री। कहन लगे फकीर साई चौना की है, कहन लगे कुछ तो मेरी झोली पा दे, कुछ तो रहमत कर। कहन लगे अच्छा जा तेरी झोली विच एक पाया, ओनली वन। गल बड़ी समझन वाली है, जे याद रही तो बड़ी काम आएगी इस जीवन दे विच, घटना जे भुल गई तो फिर कोई लाभ नहीं, किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं। इस जीवन लई ये बड़ा जरूरी है कि रोज नामचा साडा जीवन किदा दा होना चाहिए, खाली किथे दिखावे ते सिख तां नहीं रह गए, खाली शक्ल सूरत।

आखिरी वचन सुन लेने। सिफर लगते गए, 1,000 हो गए, 10 हो गए, लख बन गया। और सिफर लग गए, मिलियन हो गए, और सिफर लग गए, वधदे चले गए। एक दिन बैठा बैठा सोचता, कहिंदा वाह, बड़िया बड़िया कीमती चीजा मेरे खुदा तू छुपा के रखी है ने। बोलो सिरे, कहते मेरा बड़ा कमाल दा मेरा रब है। सिफर इतने हो गए हुण सांभे नहीं जांदे। बड़ा वड्डा शाहूकार बन गया, बड़ा वड्डा सेठ हो गया, नौकर चाकर हाथी घोड़े लश्कर बड़ा कुछ। एक दिन बैठा हुण बुजुर्ग भी हो गया, 65-70 साल की उम्र भी हो गई, हाथ में माला फड़ी बड़े कीमती पत्थर दी मोतियां वाली, माला घुमांदा घुमांदा इहदे मन विच आ गया मन, कहिंदा मेरे खुदा तेरे कोल मैं मंगण गया सी ना, ते तू ते मैनू एक ही दिता है, बाकी तो सारा मैं इकट्ठा कीता है। बोलो सिरे, मैं आ गया, ख्याल कर लिया, ओही मैं।

0: कहन लगे,
1: क्यों ना मैं तेरा एक वापस तारा हूं, बाकी तो सारा मैं इकट्ठा किया, तुर पिया, फिर पहुंच गया उथे ही जिथे नवाज पढ़ के सारा कुछ प्राप्त किया।
0: अल्लाह अल्लाह करी जांदा, कहिंदा मेरे खुदा आवाज आई,
1: आखन लगे फकीर साईं हुण की लैण आया,
0: आखन लगा मेरे मौला हुण मैं लैण नहीं आया, हुण मैं देण आया। बोलो श्री, किते साडी हालत इदां दी तां नहीं, किते असीं देण जोगे की आ गुरु नूं, जिस गुरु ने सानूं गिदड़ा तो शेर बनाने वास्ते, सिख नूं शिक्षा दे के गुरसिख बनाने वास्ते अपना परिवार तक कुर्बान कर देता, उस गुरु नूं असीं की दे सकने आ? सत संगत बोलो सिरे, असां तां गुरु कोलों लिया ही नहीं। आखण लगे पहले भिखारी बन के आया सी, हुण दाता बन रहे। आखण लगे की देना है? आखण लगे मेरे मौला मैं ते तेरे कोल बड़ा कुछ मंगण आया सी, तू मैनू एक ही दिता, इस करके एक अपना वापस लै लै, हुण मैं बहुत सारा इकट्ठा कर लिया। बोलो श्री, मेरे कोल मुक्कण वाला नहीं। आखण लगे अच्छा, बड़ा सियाणा हो गया, चतराई सियाणपा कितै कम ना आईए, बहुती चतराई बहुती सियाणप बहुती चलाखी, साहब बाणी विच कहिंदे ने ये तेरे कम नहीं आउणी, मता कितै भुलेखे विच आवे तू, मता कितै गलत फहमी विच आवे तू।
1: आखण लगे सोच लै, कहिंदा मैं सोच के ही आया। कहण लगे ठीक है,
0: वापस ले लिया, चला गया। हुण सत संगत जिहड़ी एक रूपी बरकत सी वो तां वापस कर गया, ते पिछे की रह गया? उह सिफर किन्ने क दिन रहने सन? हौली हौली हौली हौली भोग पै गया, उही फटिया चोला, पैरां विच जोड़ा भी नहीं होना, नौकर चाकर भी सारे दौड़ गए, हाथी घोड़े भी विक गए, महल भी विक गए, माड़ियां भी विक गईयां, सब कुछ विक गया, हाथ विच ठूठा फड़िया होया, फिर उत्थे ही आ गया, मेरे मौला मैनू एक वापस कर दे। बोलो श्री, फिर आवाज आई, आखन लगे फकीर साईं
1: जा, हुण भुखा नहीं रहिंदा तू,
0: क्योंकि मेरा नाम जपिया, मेरे नाल जुड़िया, मेरी बंदगी कीती है, तू भुखा नहीं रहिंदा, लेकिन वो एक हुण होर कोई लै गया है।